0: RG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360 omsorg असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: Yeah.

अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है हम में से कितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यस्टरडे की चिंता करते हैं? कल उसने मुझसे क्या बोल दिया था, कल मेरा ये काम रह गया था, कल ऐसा हुआ था, कल वैसा हुआ था। तो सुनिए दोस्तों, कल जो था वो एक ड्राफ्ट था और वो कल की बात थी, और आज जो सुबह मिली है ना, ये एक ब्लैंक पेपर है। अगर पुरानी गलतियों को बार बार लिखते रहेंगे तो नई कहानी कब बनेगी? आज का फंडा बहुत सिंपल होना चाहिए, पास्ट को डस्टबिन में डालिए और आज को रिस्टार्ट कीजिए। कल क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, और आज क्या हो सकता है, लेट्स फोकस ऑन डैट, राइट? आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: इटहैपेंस सुन रहे हैं आप मेरे साथ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय करें। आई होप कि आपको इस मॉर्निंग मजा आ रहा होगा, और जिन्होंने अभी अभी में ज्वाइन किया है उन सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप आ गए हैं इटहैपेंस में सताक्षी के साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया, तो क्या आप कहेंगे? मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी ऑफिस की बॉस, हाँ लेडी बॉस है ना, हाँ ज्यादा ध्यान तो फिर वहीं रहता है तो मतलब कोई एक ऐसा गोल, कोई एक ऐसा ड्रीम, कोई एक ऐसी बात जो सुबह उठते ही सबसे पहले जहन में आ गई, यार आज तो मेरी ये वाली मीटिंग है, यार आज तो मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी, जो भी वो पहला थॉट जो आपके माइंड में आया वो क्या था, मेरे साथ शेयर कीजिए ना रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। बताइए मुझे, स्पेशली फेसबुक पेज पर मैं एक्टिव हूँ, मुझे बताइए कि क्या है वो इस वक्त का थॉट जो आज सबसे पहले सुबह आपके माइंड में आया। मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए।
1: पत्थर है वो मुझे रोक।

जहाँ इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ हो रही हैं आज की सुबह कुछ जबरदस्त बातें। दोस्तों आजकल हम सब कितने बिजी हैं ना, टेक्स्ट मैसेज फास्ट हो गए हैं लेकिन बातें बहुत छोटी हो गई हैं। हम हाउ आर यू तो मैसेज पर सेंड कर देते हैं पर सामने वाले का जवाब ध्यान से सुनने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बोलते गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते सिर्फ बोलने के लिए हैं, समझने के लिए नहीं। तो आज अगर किसी अपने को कॉल करिएगा तो उसको सुनिएगा बिना किसी एडवाइस दिए, बिना किसी ताने के, देखिएगा वो रिश्ता कितना हल्का महसूस होगा आपको। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

एक बात बताइए, आपको कभी लगता है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं पर बदले में आपको वो केयर नहीं मिलती? ये पेन तब होता है जब हम दूसरों से वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो हम उनके लिए फील करते हैं। दोस्तों, हर कोई आपकी तरह प्यार नहीं कर सकता, हर कोई आपकी तरह एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता। रिश्तों में थोड़ी जगह देना और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना ही पीस ऑफ माइंड की चाबी है। बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ केयर होती है। आइए इसी बात पर सताक्षी को सुनिए और सुनते रहिए ठापन्स रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

Right, आप एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर। दुनिया को खुश करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। तो आज का मेरा सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, आप परफेक्ट नहीं है और ना कभी हो सकते। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, पर पता है क्या, कोई भी आप जैसा नहीं है। आप अपनी कार्बन कॉपी हैं और जितनी मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो काफी है। और उसी काफी वाली मेहनत के नाम एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए छात्रंस जी। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी मेरे साथ।

था आज का इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ साथ। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी और आपको लेकर चलूंगी आपके सपनों की ओर। कल फिर से हम और आप करेंगे जिंदगी की कुछ खास और जबरदस्त बातें, लेकिन अब आज के सफर से ये वक्त हो गया है विदा और इजाजत लेने का। सो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी मैं हाँ संदेश वाला शर्मा तुझसे सुन रहे हो रेडियो हो चुके हैं हम करते हैं खबर का फिर शुरू करते हैं शुरुआत सब तो पहला रुक करते हैं भारत के वाल जिथे भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मिंद प्रधान ने अस्तीफा दे दिता है नीट पेपर लीक विरुद्ध चल रहे विरोध प्रदर्शन दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण फैसला लिया है इस मांग लई दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी गिनती विच विद्यार्थी इकट्ठे हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई विरोधी पार्टियां भी यही मांग कर रही सन सरकार कांग्रेस जनता पार्टी

जाए फिनाल बेंसा भी नहीं हूँ दिखी जाएगी। 16 जुलाई न ऐलाने गए नीट यूजी नतीजे तसली बख्श सन, जिस विच गरीब पिछोकड़ वाले बहुत सारे होनहार विद्यार्थियों ने भी सफलता प्राप्त की। हालांकि इस समय दौरान भी जिम्मेवारियों के अहद्या तो ते बैठे व्यक्तियों ने बहुत सारे विद्यार्थियों को गुमराह करने लिए रुकावटा पैदा करने दी कोशिशां की, जिसने मैनू बहुत दुखी किया। उधर दूजे पासे भारत की विदेश नीति अक्सर एक गुंझलदार बुझारत वांग दिखाई देती है, जिथे रूसी यूक्रेन युद्ध विच रणनीतिक खुदमुख्तियारी पाकिस्तान प्रति सुरक्षा गणनावां ते संयुक्त राज अमरीका नाल व्यापारक संबंधां ने कई बार वक्खो वक्खरियां विख्यावां नूं जन्म दिता है। पर माहिरां दा मनना है कि इन्हां विकासां नूं समझण लई भारत दी डूंगी राजनीतिक सोच नूं समझण दी लोड़ है, जो सिर्फ व्यवहार द्वारा प्रभावशीत नहीं हुंदी। आजादी तों बाद भारत दा सुरक्षा दृश्य रणनीतिक अनिश्चितता विच घिरिया होया है, भावें ओह शीत युद्ध होवे युद्ध दे दौरान होवे या मौजूदा अमरीका चीन दुश्मनी दौरान। भारत दी रणनीतिक

minimum of adhikaras authorized by the Queensland Government this day. वधेरे की फाइल की रिहाई की शुरुआत वधेरे करांगी उपलब्धता नाम होती है। इसे नहीं नवीन

0: ऐ मेरी हमरथ मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाड़े इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाड़े घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
2: बिल्कुल. खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Dil se chahne ki mujhe saza dete ho. Main rota hoon aur tum मजा लेते हो.

0: पूरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मंडे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा कुछ बातों का ना तुक नहीं बनता, तो ये बात आपको नहीं करनी चाहिए। वेल, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर दिन, हर एक पल और हर एक समा सेलिब्रेट करने के लिए बना है, फिर चाहे वो मंडेज ही क्यों ना हो। हाँ, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ जाती है, थकावट होती है, लोग आपकी नर्व्स पे भी आ सकते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकता है थोड़ा, बट दैट डजंट मीन लाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल एंड द डे इज नॉट ब्यूटीफुल, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल, इट कैन बिकम ब्यूटीफुल। जी हाँ, सो मंडे को प्रोडक्टिविटी से जोड़िए, लेकिन खुशी से भी जोड़िए। मतलब ऐसे स्ट्रेस और सारी जो बुरी चीजें हैं ना, उसके साथ मत जोड़िए। मंडेज कैन बी रियली रियली गुड। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है, प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो होती है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एक रिचुअल है उसके साथ, और उस रिचुअल का नाम है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। वेल ऑफकोर्स, लंबी गहरी सांसों के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम एकदम काम रहें, हम एकदम प्रोडक्टिव बने और एकदम खुशी खुशी में हम अपने इस प्रोग्राम को पूरा करें। जी हाँ, तो आइए क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए थोड़े से जालिम बन जाते हैं, क्योंकि मंडे भी आपको जालिमों का दिन लगता है, पर ये है नहीं। जी हाँ, ये है नहीं। तो सुनते हैं जालिमा सबसे पहला गाना, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इश्क आधा हो या पूरा हो अच्छा तो लगता है, लेकिन कमबख्त इश्क खतरनाक भी लगता है। जी हाँ, आप लोगों को पता ही है क्यों खतरनाक लगता है और क्यों नहीं, क्योंकि हम सब ने अपनी जिंदगी में एक आध बार तो फील किया ही है ऐसी फीलिंग को, और नहीं किया है तो फिर आप किसी सन्यासी से कम नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा बात करते हैं सीधा मौसम के बारे में। मौसम की जानकारी आपको देने का वक्त हो गया है, क्या कह रहा है आज का टेम्परेचर और अगले दो दिन का, आइए जरा उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस के करीब, बट फील आपको हो रहा है 19.8 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, और वहीं अगर बात की जाए रात के टेम्परेचर की तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे। चांसेस ऑफ रेन 40% और यहां पर 1 mm तक बारिश होती हुई मुझे नजर आ रही है। बीच बीच में मुझे बारिश जो है वो अभी भी होती हुई नजर आ रही है, बट देन अगेन इट्स नॉट एवरीवेयर, कुछ इलाकों में हो रही है और मोस्ट प्रोबेबली ब्रिस्बेन की तरफ से। जी हाँ, इसी की तरह जो मैं देख पा रही हूँ मौसम जो है वो एयर क्वालिटी एकदम फेयर है, और अगर कल की बात की जाए यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे की तो 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है। मैक्सिमम 40% चांसेस होंगे बारिश के अगेन, और वेडनेसडे को मुझे पूरी तरह से चमकता हुआ सूरज दिख रहा है, नो बादल, नो बारिश, नो नथिंग विद 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। जी हाँ, तो मौसम ने तो सुना दिया है अपना फैसला यहाँ पर एटलीस्ट आज के लिए और अगले दो दिन के लिए, ऑल्दो उसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि बारिश जो है वो एकदम मटर गस्ती करती हुई आती है और कहती है कि मैं तो बरसूंगी। वेल, अगर जब बारिश बरसने का ठान ले तो आप नहीं रोक सकते हो, बट देन अगेन कुछ चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं और उसके हिसाब से ही ऐसा मौसम रहने वाला है जैसे मैंने आपको बताया। इसी के साथ अब आपके लिए एक और खूबसूरत सा गाना मेरी तरफ से।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਸੈਂਸਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11th ਆਫ ਆਗਸਟ 2026. Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों ऐसे के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और मौसम के बारे में भी हमने आपको बता ही दिया है, तो अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें बहुत सारी गपशपें करने के लिए और हम चाहते हैं कि उस गपशप के साथ अगर आपकी फरमाइशें मतलब आपके पसंदीदा गाने अगर हमारे पास आ जाएं तो लाजवाब काम यहां पर बन जाए। सो व्हाट यू गोना डू इज आप अपना फोन उठाने वाले हो और अगर आपको कोई गाना है पसंद जो आप चाहते हो रिक्वेस्ट करना या किसी को डेडिकेट करना, उनको स्पेशल फील करवाना, तो जल्दी से फोन उठाइए। नंबर आपको डायल करना है और वो नंबर है +91 8288 8717 01। आई रिपीट +91 8288 8717 01। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, मेरी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल की। जी हाँ, मार्वल की, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले लेकर आए हैं डूम्स डे का ट्रेलर। लेकिन डूम्स डे के ट्रेलर के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अब आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, जिस चीज के बारे में तुम पहले ही बात कर चुकी हो, उसके बारे में फिर से क्यों बात करोगी? वेल, आपने सही सोचा। ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करना फिर से बनता है, क्योंकि मूवी जो है वो 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है और ट्रेलर आ गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि जब भी मार्वल कोई भी ट्रेलर ड्रॉप करता है वो लिटरली इंटरनेट ब्रेक कर देता है, और वो इंटरनेट ब्रेक करता है तो हर किसी को खबर हो जाती है। सो अगर आपको खबर नहीं हुई है तो मतलब आप लोग लिटरली डिजिटल डिटॉक्स पे हो, क्योंकि अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। बट यहाँ पर मैं बात सिर्फ और सिर्फ डूम्स डे की नहीं कर रही हूँ, यहाँ बात मैं कर रही हूँ ब्लैक पैंथर की। अब आप लोगों को तो पता ही है कि ब्लैक पैंथर मार्वल की ही एक सुपर हीरो मूवी है, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, और इसमें चैडविक बॉसमैन ने ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले, जब वो नहीं रहे, जी हाँ मतलब 2020 में जब वो नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए, रुखसती उन्होंने ले ली, तो उसके बाद सब यही सोच रहे थे कि कितना जबरदस्त एक्टर, कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग इस दुनिया से चला गया। एंड ऑफ कोर्स मार्वल भी सोच में पड़ गया था कि अब हमारे पास हमारा ब्लैक पैंथर नहीं है, सो हु इज गोना बी द नेक्स्ट ब्लैक पैंथर।

जैक्सन जो है वो न्यू ब्लैक पैंथर के रूप में आपको 2028 में जो ब्लैक पैंथर की नई फिल्म जो है वो आ रही है उसमें नजर आने वाले हैं. मतलब ब्लैक पैंथर चेंज हो गया है बट इमोशंस और वो भावनाएं और वो सारी की सारी वाइब चेंज नहीं होने वाली. एंड आई होप डेविड जॉनसन जो है वो बहुत ही अच्छे से इस कैरेक्टर को प्ले करे, क्योंकि लिटरली जो चैडविक बॉसमैन है उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक जगह जो है वो फैंस के दिलों में बनाई है एज अ ब्लैक पैंथर. एंड आई वॉन्ट कि डेविड जॉनसन भी कुछ अच्छा ही करे. जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
12: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों हमारे यहाँ तो ठंड हो रही है, जी हाँ, और हमें तो मौसम जो है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जब धूप आती है हमें बड़ा मजा आता है, लेकिन यही धूप दुनिया के बहुत सारे कोनों में इस वक्त तबाही मचाए हुए। मतलब स्पेन में वाइल्ड फायर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि मौसम इतना ड्राई हो गया है हीट वेव की वजह से। ऐसी वाइल्ड फायर्स उन्होंने कहीं नहीं देखी। जी हाँ, यूरोप का हाल जो है वो पूरी तरह से बुरा है। फ्रांस के लोग बोल रहे कि क्या चल रहा है, हमने ऐसी गर्मी नहीं देखी। इटली के लोग बोल रहे हैं हमने ऐसी गर्मी नहीं देखी। हर जगह लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसी गर्मी तो हमने देखी ही नहीं। अब जापान बोल रहा है कि ऐसी गर्मी हमने देखी नहीं, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा, तो हम ही कर देते हैं। जी हाँ, उन्होंने एक ह्यूमन रेफ्रिजरेटर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ह्यूमन रेफ्रिजरेटर। आप लोग बोलोगे कि जापान ही सोच सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि आप खुद ही सोच लीजिए, हमने आज दिन तक बहुत सारी चीजों के बारे में सुना है जो कि जापान एकदम तूफानी करता है, लेकिन ह्यूमन रेफ्रिजरेटर हैज टू बी समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वेल, ये तो ह्यूमन रेफ्रिजरेटर है, लेकिन जापान एक ह्यूमन वॉशिंग मशीन भी बना रहा है। जी हाँ, जिसके ट्रायल जो है वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। सो पहले वॉशिंग मशीन, मतलब आपको डाला जाएगा, धोया जाएगा, सुखाया जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि चलो ये तो हमने कर दिया, अब दुनिया का कल्याण करने के लिए एक नया काम कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि गर्मी बहुत बढ़ रही है और हमको कुछ करना है, तो बस फिर उन्होंने यही कर दिया, उन्होंने ह्यूमन रेफ्रिजरेटर जो है वो बना दिया। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसके अंदर बैठना है। जी हाँ, और उसके बाद ये आपके सर, आपके कंधे और आपके बॉडी के एक और दो पार्ट्स पर जो है वो सीधा हवा फेंकेगा, उन पार्ट्स को जो कि नॉर्मली ज्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं और ज्यादा गर्मी फील करते हैं। सो उनको जो है वो एकदम ठंडा कर देगा, और फिर उसके बाद आप कुछ मिनट्स बाद जो है वो इस रेफ्रिजरेटर से बाहर आ सकते हो। जी हाँ, इट्स एज सिंपल एज दैट. या एज सिंपल एज दैट. मतलब आपको ठंडा पानी चाहिए होता था, आप फ्रिज में रखते थे, मजे से गटक गटक पी जाते थे. अब आपको लगेगा कि अरे हम ही ठंडे नहीं हो पा रहे हैं, हमको ही गर्मी लग रही है, तो हमको ही फ्रिज में रख दो. वेल, किसी ने सच्ची कहा था कि ऐसा वक्त भी आएगा कलयुग में जब आपको खुद ही फ्रिज में रख दिया जाएगा. और देखिए यही हो रहा है. और जापान जाइए, और मैं तो कहती हूँ कि ह्यूमन रेफ्रिजरेटर की इस खतरनाक करिश्मे का सदस्य बनिए, पार्ट बनिए, और फिर मुझे बताइए आपको कैसा फील हो रहा है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

कुछ गाने ना मतलब शेफ्स किस होते हैं, लिटरली क्या कहूँ मैं इस गाने के बारे में, दिल कहता है। वेल जो भी कहता है वो सुन लीजिए, क्योंकि किसी का दिल कुछ कह रहा है, आप ना सुने तो उसका दिल हर्ट हो जाएगा, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये तो हमें बड़ों ने सिखाया है, राइट। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा हर किसी के दिल की सुनने लग गए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हमारे कानों में चीजें गूंजती रहेंगी और हम क्या करेंगे। वेल बात भी सही है, सो मतलब ये आप पर है कि आपको कितना सुनना है और कितना छोड़ना है, वो आप खुद समझदार हो। जी हाँ, चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब एक बहुत ही खूबसूरत सा रिकमेंडेड सॉन्ग प्ले करने का वक्त आ गया, एंड द रिकमेंडेशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि ये रिकमेंडेशन आया है हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से। सर थैंक यू सो मच, आपके जो रिकमेंडेशन होते हैं ना, सबसे पहले तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, हमेशा ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं, और मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे लिसनर्स देखो इतनी प्यारी प्यारी फरमाइशें जब आप लोग भी करते हो ना तो भी एक वाइब बन जाती है, और हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही इवनिंग वाइब है, तो वाइब तो जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। जो गाना रेकमेंड किया गया है वो है पायल मेरी जादू जगाती है। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनते हैं इसको। एंड थैंक यू सो मच सर इस खूबसूरत सी रिकमेंडेशन के लिए वंस अगेन, एंड मेरे लिसनर्स जल्दी से आ जाइए आप भी अपनी फरमाइशों के साथ, बिकॉज मुझे पता है कि आपकी फरमाइशों में जो दम है वो तो दम आलू में भी नहीं है। जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल।
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
7: यार आई एम सो वरीड, actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
7: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
8: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार चेनी भाई के साथ। दोस्तों बाकी सब छोड़ के जरा सबसे पहले बर्थडे विश कर लेते हैं, और बर्थडे है एक बहुत ही स्पेशल लेडी का जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिनकी हॉटनेस के चर्चे दूर दूर तक होते हैं और खासकर आजकल तो बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि उनका एक गाना है माशूका जिसने इंटरनेट, सोशल मीडिया और हर जगह आग लगा दी है। जी आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, आग नहीं लगानी है, बाकी सब बढ़िया है, क्योंकि हर जगह वाइल्ड फायर्स जो है वो परेशान कर रही है। आग नहीं लगानी है नीवेश शर्मा, तुम कुछ और बोल दो, ठीक है? आग के बजाय हम कुछ और कहेंगे, बट द थिंग इज कि शी इज लुकिंग सिजलिंग हॉट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन कृति सेनन। जी हाँ, कृति सेनन के बारे में बात हो रही है, आज है उनका जन्मदिन, तो सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद कृति जी, हमारी तरफ से आपको, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद आपको। हम यही कहेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, आपके लिए काफी अच्छा रहा है ये लास्ट साल भी, और ये वाला भी बहुत अच्छा रहे। आप अच्छे अच्छे अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाए, बिजनेस आपका चल रहा है बहुत अच्छा, एक्टिंग आपकी चल रही है बहुत अच्छी, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हम आपको विश क्या करें, बट द थिंग इज कि वी वांट टू विश यू हैप्पीनेस एंड दैट्स इट। आप खुश रहे ये साल, हेल्दी और वेल्दी और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती रहे, यही हमारी दुआ है। और क्योंकि कृति सेनन का जन्मदिन है आज, तो उनका गाना तो बनता है, एंड व्हाट बेटर song can there be than Mashuka? I mean Mashuka is like lit song. हमारी top 10 hot 10 की जो list है ना, उसमें number 1 बना हुआ है इतने time से। So Mashuka सुनते हैं, and again happy birthday to Kriti Sanon।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं जरा खबरों की। जी हाँ, खबरों की तरफ रुख करने का वक्त आ गया है। मतलब यही है कि दुनिया में क्या चल रहा है वो हम आपको बताएंगे, पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और बेसिकली क्या तूफानी वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के साथ, और वो है न्यूयॉर्क जाने पर गिरफ्तारी से जुड़े सवालों पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ कहा है। जी हाँ, सो अगर आपको पहले माजरा नहीं पता है तो आपको बता दें कि ज़ोरान ममदानी जो है उन्होंने कहा था, जो कि न्यूयॉर्क के मेयर है, जब वो बनने वाले थे न्यूयॉर्क के मेयर, कि जब बेंजामिन नेतन्याहू अगर गलती से भी न्यूयॉर्क में आ गया तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास इतना हक नहीं है कि हम किसी को गिरफ्तार कर सके, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास ही होता है। अब इस पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद भी कुछ कहा है, आइए जरा जानते हैं क्या कहा गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क जाएंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोरान ममदानी अपने एक बयान में उन्हें गिरफ्तार कराने की बात कह चुके हैं। हालांकि पिछले सप्ताह ममदानी अपने उस बयान से पीछे हट गए थे। उन्होंने माना था कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर नेतन्याहू को गिरफ्तार कराने का कानून अधिकार उनके पास नहीं है। रविवार को फोकस न्यूज से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि वो ममदानी के पहले दिए गए बयान को लेकर चिंतित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममदानी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा उन्हें सभी न्यूयॉर्क वासियों के मेयर की तरह काम करना चाहिए, चाहे वे यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या किसी भी समुदाय के, लेकिन वो एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में हुई चाकूबाजी की दो घटनाओं का भी जिक्र किया। इन घटनाओं में एक संदिग्ध ने कुछ ही दूरी पर एक यहूदी और एक एशियाई मूल के व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था। इसके साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएं।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: डिजिसेल, बेटर टुगेदर।
6: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
8: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
7: अच्छा, वो क्या?
8: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
7: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
8: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का

रेडियो ब्रस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं खबरों की, यानी कि दुनिया में क्या चल रहा है उसी की। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है जोहरान ममदानी की स्टेटमेंट पे, जो कि उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं अगर वो न्यूयॉर्क पे लैंड करते हैं। अब जरा चलते हैं सीधा वाइल्ड फायर्स की तरफ, क्योंकि वाइल्ड फायर से परेशान हुआ है यूरोप। स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, अभी फ्रांस के बोर्डो शहर के पास जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जी हाँ, फ्रांस के शहर बोर्डो के पास जंगल में लगी भीषण आग को देखते हुए आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा कि इलाके में स्थिति अभी भी बेहद मुश्किल बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आग अनिश्चित दिशा में बढ़ते हुए बोर्डो की ओर बढ़ रही है। हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल शहर को खाली कराने की संभावना को कम बताया है। शनिवार रात से रविवार सुबह तक बोर्डो के दक्षिण में स्थित जिरोंद क्षेत्र के गांवों से करीब 55,000 लोगों को निकाला गया। ये इलाका अपने अंगूर के बागानों और वाइन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पिछले एक सप्ताह से यूरोप के कई हिस्सों में जंगलों में आग भड़क रही है। सबसे अधिक असर फ्रांस और स्पेन में देखा गया है। यहां अब तक 3,30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

0: जिया दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं उसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है, और मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और कॉकरोच प्रोटेस्ट, जो कि इंडिया में भारत के जंतर मंतर, भारत की कैपिटल दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहा था। बहुत ज्यादा विवाद जो है इसकी वजह से हो गया था, और ये हुआ क्यों था सबसे पहले तो आपको बता देते हैं। अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्यों हो रहा था, बट इनकेस आपको नहीं पता है तो लेट मी जस्ट गिव यू द रिव्यू प्रीव्यू। एंड ये प्रोटेस्ट शुरू होता है इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले नीट एग्जाम, जो कि अपेरेंटली एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है डॉक्टर बनने के लिए, वो एग्जाम पेपर जो है वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की होती है एंड दे वांटेड टू बी अ डॉक्टर, उनको इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कितनी सारी मेहनत की थी और एंड में पेपर लीक हो गया। लाइक वॉट इज दिस सिचुएशन। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया इसी वजह से, बिकॉज दे कुडंट कोप अप विद इट। अब ऐसे में जब ये सारी की सारी चीज हुई, उसके बाद जो है तीन महीने पहले ये सब हुआ था, तीन महीने के बाद जो है उसके बाद जो है फिर से एक नई परीक्षा जो है वो करवाई गई, नीट एग्जाम पेपर्स जो है उन्हें सेफ रखा गया, फिर जो है परीक्षा हुई, स्टूडेंट्स जो है वो टॉप कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो अच्छी रैंकिंग लेकर आ गए, अपनी अपनी जगह पर सब चले गए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नाराज थे इस पेपर लीक की वजह से, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की कोशिश की। जी हाँ, और ये प्रोटेस्ट वही था जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी का एक लीडर है जिसका नाम है दीपके, जी हाँ, और वो जो है इसको लीड कर रहे थे, सोनम वांगचुक इसे लीड कर रहे थे, और वो जंतर मंतर पर बैठे थे। फिर उसके बाद वो संसद यानी कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च वो कर रहे थे, जिसमें लाठीचार्ज हो गया, बहुत झगड़ा जो है वो वहां पर हो गया, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है और बच्चे जो है वो इसमें आक्रोश में आ गए एंड दे वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिगेस्ट कॉज। बट टर्न आउट कि उसके बाद जो है, और जो सबसे बड़ी जो बेसिकली इनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजाइन करें, क्योंकि उनको लगता था कि रेजिग्नेशन से जो है वो सब कुछ सॉल्व होगा। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि ऐसा कुछ ना हो, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बिल्स भी लाए जाएंगे जो कि पेपर लीक होने से बचा सके। जी हाँ, उन्होंने टास्क फोर्स तक बना दी। अब ऐसे में सोनम वांगचुक, जो कि एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर, जिन्होंने बेसिकली अपनी भूख हड़ताल से इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन वो जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे वो अभी भी लगे हुए थे इसी कॉज के लिए, और अब जो है वो पिछले कल जो है वो रेजिग्नेशन जिस मिनिस्टर का मांग रहे थे उनको वो मिल गया, टास्क फोर्स बन गई, सब कुछ जो है वो हो गया जो वो चाहते थे, और फाइनली वो विवाद जो है वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक ऐसा विवाद, एक ऐसा पेपर लीक जिसने पूरे के पूरे देश के युवा जेंजी लोगों को एक साथ एक मंच पे ला दिया, अब वो फाइनली जो है वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। क्या ये डेमोक्रेसी की जीत है? वेल ऑफकोर्स इट्स विन फॉर अ डेमोक्रेसी, और ऐसे में आगे ऐसा ना हो कुछ भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो वॉट, कुछ वक्त पहले मेरे एक बहुत ही खास लिसनर हैं और मेरी उनसे बात हो रही थी इसी बारे में, और उन्होंने कहा था कि दूध लीक हो गया, पेट्रोल लीक हो गया, पानी लीक हो गया, ये समझ आता है पेपर कैसे लीक हो सकता है। एंड आई वाज लाइक, या यू आर राइट, सो आई गेस पेपर लीक नहीं होने चाहिए बिकॉज स्टूडेंट्स की मेहनत होती है बहुत ज्यादा जरूरी, और यहाँ पर इसके लिए संसद में नया बिल भी आ गया है। सो भारत की केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रोविजन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में बदलाव का बिल आज लोकसभा में पेश कर रही है। यहाँ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया है। पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। केंद्र सरकार ऐसे मामलों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बना सकेगी। इस बिल के मुताबिक सीबीआई या एसआईटी को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। प्रस्तावित कानून के तहत 5 से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जो इसका लीक में सामने आएगा। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते, मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है, सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

तो मुझे ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जेंजी लोगों ने लाइफ को कितना इजी बना दिया, सिंपल बना दिया. मतलब उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं है. अगर उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो वो नहीं करेंगे जी हाँ, और कोई उनसे वो करवा नहीं सकता. मतलब दे आर सो लाइट हार्टेड पीपल. उनको अच्छा लाइट लाइट रहना ही पसंद है. कोई भी उनको बैगेज नहीं दे सकता जी हाँ. और जेंजी लोगों के जो मीम्स है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है. और वो मिलेनियल्स या मिलेनियल से पहले की भी जो जितनी भी जनरेशन है, मुझे लगता है हम सबको सीखने की जरूरत है. सो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मैंने कुछ देखा एंड आई वाज लाइक या दैट डज मेक सेंस. बट ये चीज कितनी ज्यादा इजी हो जाएगी अगर हम ये सीधा बोल दें. अगर कोई हमें कुछ पूछेगा तो हम सीधा यही क्यों नहीं बोल सकते? मतलब हमें इतने ज्यादा उसको शुगर कोटेड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जी हाँ, वी आर ह्यूमंस. कैन वी बी जस्ट वेरी रॉ, लाइक लिटरली, राइट? सो द थिंग वॉज कि एट दिस एज, जी हाँ, जो मीम था वो क्या था मैं आपको बताने वाली हूँ. वहां पे लिखा हुआ था, एट दिस एज प्लीज स्टॉप आस्किंग मी माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा. एट दिस एज प्लीज स्टॉप आस्किंग मी माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स. आई लाइक मनी एंड फूड एंड आई डिसलाइक नॉट हैविंग मनी एंड फूड. प्लीज डोंट स्ट्रेस मी आउट. भाई बात तो सीधी है, लाइक्स और डिसलाइक्स क्या होता है भाई? क्या होता है लाइक्स और डिसलाइक्स? सीधी सी बात है, पैसा पसंद है, खाना पसंद है, और पैसा और खाना ही पसंद है. इसके अलावा लाइक्स नहीं है, इसके अलावा डिसलाइक्स नहीं है. सो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट्स अबाउट इट. अब और क्वेश्चन मत पूछो प्लीज. यही हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, खाना और पैसा. आई गेस दैट्स व्हाट इट इज अबाउट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और एक और बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि उड़ते उड़ते किसी ने मुझे सुनाई है और मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, नो नो नो नो नो नो नो, एक और बार हम ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। वेल, डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में कहा है कि वो फिर से प्रेसिडेंसी के लिए रन करना चाहते हैं 2028 में। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निविया, नो नो नो नो नो नो, एनीथिंग बट नॉट दिस। या आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। ये सेम चीज मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में यही चल रही थी कि जब मैं अपने लिसनर्स को बताने वाली हूं उनके दिमाग में क्या आएगा, यही आएगा। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक टोपी पहन ली, वैसे तो वो टोपी लोगों को पहनाते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने खुद एक लाल रंग की कैप पहनी जिस पर लिखा हुआ था 2028 ट्रंप 2028। और मुझे नहीं पता कि उनको देख कर कितने लोगों ने वूहू किया था, लेकिन हम तो ये वूहू बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि जब ट्रंप बनते हैं प्रेसिडेंट बाकी सबकी लंका लग जाती है। जी हाँ, अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जितनी भी कंट्रीज है सबकी सब परेशान है। मतलब कितना अनप्रडिक्टेबल इंसान है। अभी फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेक्सिकन और कैनेडियन लीडर्स के साथ खड़े होकर बहुत ही हंसते हंसते जो है वो फाइनल देख के ट्रॉफी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन बाद में आते ही कनाडा की पूंछ में आग लगा दी। आप लोग बोलोगे कनाडा की पूंछ में आग लगा दी, अरे ऑफकोर्स वो तो मैं थोड़ा मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, बट द थिंग इज कि उस पर टैरिफ लगा दिया। जी हाँ, अब टैरिफ लगा दिया, बोलते अब मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर से कनाडा के पीछे पड़ गए। अब कनाडा के जो PM है वो भी सोच रहे होंगे कि क्या इंसान है, मतलब कि आपको कौन इसको दवाई क्यों नहीं देता, कोई दवाई दो और ठीक करो इस इंसान को, बिकॉज अगर ये ठीक नहीं हुआ ये पूरी दुनिया को बीमार कर देगा। बट द थिंग इज कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जोकिंगली अनाउंस किया है कि ही माइट रन फॉर अ फोर्थ टर्म एंड दैट विल बी ट्रंप 2028, पीपल आर लिटरली पैनिकिंग एंड इंक्लूडिंग मी। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। और इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, आप को अब मैं कुछ सोचने के लिए कहने वाली हूँ, मतलब कुछ इमेजिन करने के लिए कहने वाली हूँ, और फिर आप इमेजिन करके खुद ही जो है वो मुझे बता दीजिएगा कि आप क्या सोचोगे या आप क्या करोगे इस सिचुएशन में. सो मानिए कि आप एक जगह पर ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए हैं, एक कैफे में या एक रेस्टोरेंट में, और आप बड़ी ही मजे से अपना खाना जो है वो खा रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट जो है कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ज्यादा, और सडनली दरवाजे की तरफ से एक बहुत बड़ी परछाई आपको आते हुए नजर आती है. आपको लगता है कि ओके ठीक है, कुछ भी होगा, मतलब आप इतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन जब वो परछाई रियलिटी में बदलती है तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाती है. जी हाँ, आपको दिखता है कि एक बहुत बड़ा 900 पाउंड का बुल उस दरवाजे से अंदर की ओर आ रहा है और वो कुछ करने आ रहा है. आप बोलोगे कि है निव्या शर्मा, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, ये इमेजिन तुम ही करो, हमको नहीं इमेजिन करना, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम ही अपने भेजे में बनाओ, हमें नहीं बनानी. वेल, इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट्स अ रियल स्टोरी. जी हाँ, सो 900 पाउंड का ये बुल जो है, इसने क्रैश किया स्पेन का एक कैटलोना बार, जो कि ब्रेकफास्ट जो है का टाइम था उस वक्त, जो है वो रेस्टोरेंट और बार था, और वहां पर लोग जो है वो बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे थे, और एकदम से वहां पर एक सांड आ जाता है, एक बुल आता है बड़े ही मजे से. इज लाइक यू नो व्हाट, डोंट वरी, आई एम जस्ट गोना गो एंड ग्रैब अ ड्रिंक फॉर माई सेल्फ, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू पैनिक. बट पैनिक तो होगा ही कोई इंसान अगर उसको एकदम से इतना भारी भरकम जो है वो सांड आता हुआ नजर आ जाएगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. यहां पर ये वीडियो जो है इसको ऑफकोर्स कैद करने की किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी, तो ये वीडियो को कैद करने का काम जो है वहां के सीसीटीवी कैमरा ने किया है, और ऑफकोर्स फिर वो लोगों को वहां पर देख रहा था, यहां वहां देखता रहा, उसने देखा कि ओके ये लोग खाना खा रहे हैं, बट ये खाना इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, मेरा बाहर का जो घास फूस है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो आई'ड रादर गो. या वो बड़े ही अच्छे से आता है यहां वहां देखता है लोगों को और उनके खाने की तरफ, एंड ही इज लाइक यू नो व्हाट, इंसान मुझसे ज्यादा अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, इंसानों का खाना ज्यादा बोरिंग है, सो आई विल जस्ट लीव, आई डोंट वांट टू ड्रिंक, आई एम गोना लीव. या दैट्स व्हाट ही डिड. वो बड़े ही मजे से फिर से बाहर चला जाता है दरवाजे के, और वहां पर लोग जो है उनको चक्कर वहां पर आ रहे होते हैं, पीपल वर लाइक व्हाट इज हैपनिंग, मतलब हम यहाँ खाना खाने बैठे हुए और यहाँ पर एकदम से बुल आ रहा है और जा रहा है अपनी मर्जी से, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, दरवाजा बंद क्यों नहीं करते तुम लोग. बढ़िया, तब तक तो घटना हो चुकी थी. और जैसे मैंने कहा कि ऐसे में लोगों का जो इंसान है उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, उनके कैमरे निकल आते हैं, उनके फोन्स निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इतना डर गए थे कि उनके फोन भी नहीं निकले, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुआ किसमें, ऑफकोर्स वहां के सीसीटीवी कैमरा में. सो मैं इतना ही कहती हूँ कि जानवर जो है ना वो बहुत ही प्यारे क्रिएचर्स हैं, अगर आप इनको नहीं छेड़ो तो ये आपको भी नहीं छेड़ते. मतलब आया था, खुद ही चला गया आराम से, यू आर लाइक निव्या शर्मा दैट्स नॉट आराम से, मतलब वहां पे पैनिक हो गए होंगे लोग. वेल या, उस मामले में आप सही हो, पैनिक तो हो गए थे, पर वो आया और बड़े मजे से चला गया, दैट्स द पॉइंट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, जो कि कहीं ना कहीं पहले ही शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो आपने दो गाने सुने अभी लास्ट, ये बहुत ही खूबसूरत थे और ये भी ऑलमोस्ट ओल्ड इज गोल्ड का ही हिस्सा थे। बट द थिंग इज कि अब ऑफिशियली ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो रहा है, मतलब कि आपकी फरमाइशें भी पुराने गानों से रिलेटेड होनी चाहिए। मैं भी आपके लिए पुराने गाने प्ले करूंगी और प्लस मैं आपको किस्से भी सुनाऊंगी, दैट टू पुराने। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से आ जाइए अपने पुराने गानों की फरमाइश लेकर। और यहाँ पर जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस गाने का नाम है, गेस कर सकते हैं आप, किसी राह में किसी मोड़ पर। आप सबके लिए

हमने उनके बारे में काफी सारी बातें की थी, कैसे वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, कैसे वो एक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें कहते थे कि एक्टिंग कैन बी अ गुड करियर फॉर हिम बिकॉज ही वॉज रियली हैंडसम, बट देन टर्न आउट कि एक्टिंग के बजाय सिंगिंग जो है वो उनका फोर्टे निकला. लेकिन एक चीज जो है वो मुकेश की सिचुएशन हमें समझाती है कि हमें अगर कुछ अचीव करना है ना, अगर कुछ चीज पर हमारा दिल बिलीव करता है, किसी चीज में हमारा दिल बिलीव करता है, तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए. लाइक या आई नो कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, और अगर मैं कहूंगी कि मैं सिंगर बनूंगी तो आई डोंट नो कि ये सच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट मुकेश को जब कहा गया था कि कैसे उनकी वॉइस टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, सुरीला नहीं है और लोगों को पसंद नहीं आएगा, टर्न्स आउट कि वो सब उन्होंने एकदम चेंज कर दिया. या उनका वॉइस टेक्सचर जो है वो यूनिक था, बट वही उन्होंने अपने यूएसपी बना ली. लेकिन जो चीज उनके किस्से ने और उनके सिचुएशन ने हमें समझाई वो ये थी कि अगर हमें कुछ अचीव करना है और अगर हमारा दिल मानता है किसी चीज में, तो हमें उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमें उसे हार नहीं माननी है, हमें उस चीज के लिए पूरी तरह से लड़ना है. एंड मैंने ऐसे लड़ना है लोगों से नहीं, बल्कि ऑफकोर्स उसकी अपॉर्चुनिटीज से लड़ना है, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ना है. जी हाँ, एंड मैं यही आपको कहना चाहूंगी कि मंडे है तो मोटिवेट करना तो बनता है थोड़ा, तो यही कहना चाहूंगी कि मुकेश की गायकी आपने यहां सुनी, लेकिन ये गायकी उनके लिए शुरू करना कोई इजी टास्क नहीं था, लेकिन अगर इन्होंने किया और राज कपूर की ये आवाज बने आगे जाकर, तो आई थिंक हम सब भी कुछ भी कर सकते हैं, राइट? यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: से न पूछो कि तुम।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना, और एक और खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि अगेन एक रेकमेंडेड सॉन्ग है, मेरी तरफ से नहीं है बल्कि इसका रेकमेंडेशन आया है किसी की तरफ से, और ऑफ कोर्स हम उसे प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। अब हाथी मेरे साथी आपने देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मूवी जितनी लेजेंडरी है उसके गाने भी उतने ही लेजेंडरी है। अब राजेश खन्ना और किशोर दा की ट्यूनिंग इतनी मैच हो गई थी इस मूवी के आते आते तक कि मतलब राजेश खन्ना की आवाज जो है वो किशोर दा बन गए थे। जी हाँ, मतलब राजेश खन्ना की जो आवाज थी वो किशोर दा की आवाज ही बन गई थी पूरी तरह से। अब जब भी राजेश खन्ना का कोई भी गाना होता तो किशोर दा ही उसमें जो है वो गाना गाया करते थे, ऐसा हमेशा ही ऑलमोस्ट हमेशा होता था। लेकिन हाथी मेरा साथी का एक गाना था जो कि काफी दर्द में जो दिल होता है ना उससे निकल कर जो आवाज आती है वैसा ही कुछ गाना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उसे बना रहे थे, और ये गाना गाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचते हैं किशोरदा। किशोरदा गाना गाने शुरू करते हैं, गाना गाना लगते हैं, और गाना गाते गाते वो देखते हैं कि गाना जो है वो उतने अच्छे से गा नहीं पा रहे जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहते हैं, वैसे वो गा नहीं पा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने फिर से ट्राई किया। अब किशोरदा इतना बड़ा नाम थे कि ऐसा तो कह नहीं सकते थे कि किशोरदा को हटाओ किसी और को लेकर आओ, बिकॉज किशोरदा वाज किशोरदा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सामने से इतना कह दिया कि मुझे लगता है कि हम ये गाना जो है वो सुन नहीं पाएंगे, हमें ये गाना जो है वो हटाना पड़ेगा, कि बिकॉज देयर इज नो वे कि किशोर दा को हटाया जा सके, वो इतनी बड़ी हस्ती थे और किशोर दा को हटाना जो है वो लिटरली बहुत गड़बड़ हो सकती। तो फिर क्या था, यहां पर किशोर दा ने ही बार बार कोशिश की, और जब उन्हें लगा कि ये चीज उनसे नहीं हो पा रही है तो उसके लिए उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कहा कि मुझे लगता है कि जो दर्द आपको चाहिए इस गाने में, उस दर्द को माइक पर, स्क्रीन पर सिर्फ एक ही इंसान उतार सकता है, और वो है मोहम्मद रफी। सो बस कीजिए, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कर ली, अब यहाँ रहने देते हैं, इसे इधर ही छोड़ देते हैं, और रफी साहब को बुलाइए और रफी साहब से इस गाने को गवाइए। फिर क्या था, रफी साहब को बुलाया जाता है और रफी साहब से ये गाना गवाया जाता है, और ये चीज प्रूव हो जाती है कि कभी कभी आर्टिस्ट भी दूसरे आर्टिस्ट की कैपेबिलिटीज में इस कदर बिलीव करते हैं कि सब जो है उसे मानने पर मजबूर हो जाए। जी हाँ, हाथी मेरा साथी का वो कौन सा गाना है क्या आप गेस करेंगे? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन है ये आपको आंसर मुझे देना है, और आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हमारे पास रिकमेंडेड सॉन्ग पहले ही आ गया है जो कि हम प्ले करने वाले हैं, गाने का नाम है वो शाम कुछ अजीब थी, किशोर दा का ही ये गाना है, खामोशी मूवी का ये गाना है, 1969 में आई थी। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकमेंडेड सॉन्ग, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आपसे मिलना होगा कल। बाय बाय, सी यू, टाटा। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और अगेन अपनी आरजे निविया से मिलते रहिए ऑन टाइम। बाय बाय, सी यू, टाटा।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन क्लॉक लॉन्च। ब्रिस्बेन के क्वीन स्ट्रीट मॉल में 2032 ओलंपिक खेलों का 6 साल का ऑफिशियल काउंटडाउन क्लॉक शुरू कर दिया गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान मेयर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शहर के लोकप्रिय इबिस पक्षी को भी ओलंपिक का शुभंकर बनाया जा सकता है। वहीं ब्रिस्बेन का फैशन ब्रांड ब्लैक मिल्क का बड़ा फैसला। जी हां, ब्रिस्बेन का मशहूर क्लॉदिंग ब्रांड ब्लैक मिल्क अब अपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बंद कर रहा है। बढ़ते खर्चों के कारण कंपनी अब अपने कपड़ों का उत्पादन विदेश में करेगी। हालांकि इसके डिजाइन का काम ब्रिस्बेन स्टूडियो से ही चलेगा। वहीं मॉर्टन आइलैंड पर बर्ड फ्लू का संदिग्ध मामला। ब्रिस्बेन के पास मॉर्टन आइलैंड पर एक मृत समुद्री पक्षी में H5 बर्ड फ्लू की पुष्टि का संदिग्ध मामला सामने आया है। हालांकि क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्मर्स सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं ग्रेट बैरियर रीफ पर यूनेस्को की रिपोर्ट। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में सूची में डालने से रोक दिया है। हालांकि उन्होंने क्वींसलैंड सरकार के को जंगलों की कटाई रोकने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पीक डाउन्स माइन में दुखद हादसा। क्वींसलैंड की पीक डाउन्स माइन में आज सुबह वाहन दुर्घटना में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। माइनिंग कंपनी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ओरिजिन एनर्जी ग्राहकों के लिए डेटा अलर्ट। क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ऊर्जा प्रदाता ओरिजिन एनर्जी ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है कि एक साइबर हमले के दौरान कुछ बैंक डाटा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने ग्राहकों को पासवर्ड बदलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बड़ी बातचीत। नीट और एग्जाम लीक मुद्दे को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में आज बड़ा अपडेट आया है। सरकार और छात्र नेताओं के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं अमेरिका का भारतीय सामानों पर नया टैरिफ। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 10% का नया आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रेड नियमों का हवाला दिया है। हालांकि भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं DRDO की मिसाइल कुशा का सफल टेस्ट। भारत की रक्षा प्रणाली को आज एक बड़ी ताकत मिली है। रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने अपनी नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ऐसे के साथ गंगा किनारे से अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि पटना में गंगा नदी के किनारों पर बने सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 6 हफ्ते के भीतर पूरी तरह साफ किया जा सके। वहीं शिक्षकों के लिए दिल्ली चुनाव आयोग की राहत। दिल्ली चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची और चुनावी सर्वेक्षण से जुड़े सरकारी कामों का असर सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा। मिडल ईस्ट के समुद्री व्यापारिक रास्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य और समुद्री निगरानी ठिकानों पर लगातार 13वें दिन हवाई हमले किए हैं। वहीं शी जिनपिंग करेंगे अमेरिका का दौरा। वॉशिंगटन से बड़ी खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 दिसंबर को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी के साथ विमानन संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी सादिया जहीदी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था में इतिहास रच दिया है। सादिया जहीदी को इस वैश्विक उड्डयन संस्था की पहली महिला प्रमुख चुना गया है। वहीं स्पेन में जंगलों की आग बुझाने का अनोखा तरीका। स्पेन में जंगलों की आग रोकने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया है। वहां प्रशासन गधों की मदद से जंगलों की सूखी घास चरवा रहा है ताकि गर्मी के दिनों में झाड़ियों में अचानक लगने वाली आग को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ सलमान रुश्दी ने कोर्ट में दर्ज करवाई गवाही। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने साल 2022 में न्यूयॉर्क में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में चल रहे ट्रायल के दौरान अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करवाई है। इसी के साथ नेपाली सीमा पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार। नेपाल से भारत की सीमा में बिना कागजात अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में एक अमेरिकी नागरिक और एक संदिग्ध अलगाववादी कार्यकर्ता शामिल है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का शानदार आगाज। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान 23वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत हो गई है। वहीं भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। हरारे में खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं विश्वनाथन आनंद बने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष। भारत के पूर्व विश्व चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एक्शन से भरपूर शुरुआत। ग्लासगो में आज भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग जिम्नास्टिक और स्विमिंग के खिलाड़ी एक्शन में हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में आज भारत के पास पदक जीतने के कई मौके रहेंगे। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ, ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNC.

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: क्या कहा?

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

सर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Aaya kya?
5: Aayega.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: cama?
1: Na badla mein, na badla.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में। जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ, लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

एचिप्रस्वानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रीजो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े, वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और लेकर आई हूं आप सभी के बीच ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे ताजा अपडेट्स। उन सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना होगा मेरे यानी की जानी के सफर प्रोग्राम के साथ, ताकि इस सफर को बेहतरीन बना सके। तो दोस्तों, आप सभी का मंडे तो बहुत खूबसूरत गया, वैसे ही आप सभी का ट्यूसडे यानी की आज का दिन भी बहुत खूबसूरत जाने वाला है। एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होकर आप ये सफर को जरूर जरूर जरूर एंजॉय कीजिए। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो हम आज टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्रिस्बेन एंड क्वींसलैंड की कुछ हेडलाइंस को जानते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली है। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की तो उन्होंने कई तटीय इलाके के लिए स्ट्रांग विंड वार्निंग जारी की है। लोगों को समुद्र किनारे अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। वहीं पर अगर हम ब्रिस्बेन की बात करें तो ब्रिस्बेन लगातार बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स का हब बनता जा रहा है। शहर ने LNG 2029 जैसी बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का अधिकार जो है वो हासिल किया है, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। जानेंगे थोड़ी देर बाद और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी इंजॉय कर रहे हैं ट्रैक्स को। और वैसे भी दोस्तों, आज ब्रिस्बेन में मौसम जी ठंडा रहेगा। सुबह हल्की ठंड और दिन भर में लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। तेज हवाओं के कारण बाहर निकलते समय जैकेट तो वही रखनी जरूरी है, क्योंकि मौसम कब करवट ले ले कुछ पता नहीं। तो आइए फिर इसी के साथ हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में जरा जाते हैं और झांक कर देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। दोस्तों, हॉलीवुड की नई फिल्म रनर इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि इसमें ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट को खूबसूरती से दिखाया गया है। ये फिल्म जो है क्वींसलैंड को दुनिया के सामने एक नई पहचान देने वाली मानी जा रही है। तो ये फिल्म जरूर जरूर जरूर देखना। दोस्तों, वहीं पर अगर हम म्यूजिक लवर्स की बात करें तो म्यूजिक लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मशहूर सिंगर ब्रायन एडम्स जो है वो अगले ही साल अपनी रोल विद द पंचेस टूर के साथ ब्रिस्बेन आने वाले हैं। और इस कॉन्सर्ट में उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पॉप स्टार नेटली इमरुलिया भी स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है। तो है ना, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तय दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसी के साथ स्पोर्ट्स अपडेट जानते हैं। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन में आयोजित यूसीआई बीएमएक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स तेज हवाओं की वजह से प्रभावित हुई है। इलाइट फाइनल्स रद्द करनी पड़ी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जेस एल्समस और जोश जॉली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड अपने नाम किया है। वहीं पे दोस्तों, भारत में मॉनसून कई राज्यों में सक्रिय है और मौसम विभाग ने भारी बारिश वाले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रा करने वाले लोग जो है मौसम अपडेट देखकर ही घर से जरूर निकले। और वैसे भी दोस्तों, अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें ना, तो हर चीज अच्छी होने लगती है। जी हाँ, हर नई सुबह आपको एक नया मौका हमें देती ही देती है। अब भाई, सपनों को सच करना है तो मुस्कुराने का और आगे बढ़ने का हौसला हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। तो आइए फिर अब लगातार हम सुनते हैं कुछ गीत, यानी कि दो गीत हम आपको सुनाएंगे रेडियो ब्रिस्बेन में। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। वैसे दोस्तों एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पढ़ाई, बिजनेस और रोजमर्रा के कामों का एक अहम हिस्सा बनती ही जा रही है। वैसे भी अगर हम कुछ वायरल फैक्ट की बात करें तो दोस्तों लोग जो है ना आजकल क्या करते हैं, आजकल हम यूट्यूब देख ले, इंस्टाग्राम देख ले, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर हम झांक कर देखें तो अगर हम खुद की भी बात करें, अब कोई भी लॉन्ग वीडियोज जो है वो देखना पसंद नहीं करता। हाँ, ब्लॉगर्स जो है ब्लॉगिंग करते हैं उन्हें जरूर हम पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट वीडियोस की बात करूं तो मैक्सिमम 30 सेकंड से ज्यादा वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, यानी कि छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स ही पसंद करते हैं। वहीं पर अगर मैं हेल्थ टिप की बात करूं दोस्तों, दिन की शुरुआत हमेशा जी गिलास पानी से जरूर कीजिए, हल्की वॉक जरूर कीजिए, क्योंकि पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करने के लिए और साथ ही साथ जी चांदनी का सफर सुनने के लिए जी आपको पानी पीना, अपनी एनर्जी को बरकरार रखना तो पड़ेगा ही। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें कुछ गानों की, तो गाने अगर हम पुराने वर्सेस न्यू गाने को अगर हम कंपेयर करें तो भाई ओल्ड गाने जो है वो वैसे भी गोल्ड है। क्यों? क्योंकि जी पुराने गाने जो मैं आपको सुनाती हूँ उसमें कुछ शब्द, कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब वाकई ही अंदर से ना हमें झंझोर कर रख देती है। अब झंझोर कर रखने वाली बात ये है कि वो ना पहले हमारा जो कनेक्शन होता थे वो दिल के दिल से तार जुड़ती थी आपस में, तो उससे गाने बनते थे। दिल का कहते हैं ना कि हम लोग अपने दिल की जो बात है, दिल का इजहार है, वो हम गाने के थ्रू किया करते थे जो सामने वाले को समझ आ जाया करते थे। अगर हम आज के गानों को बात करें, हाँ आज का बुरा नहीं होते, आज के टाइम के गाने अच्छे हैं लेकिन सिर्फ सुनने लायक है, हाँ ठीक है, लेकिन जो फीलिंग्स की बात करें जी वो तो दम आज भी पुराने गानों में ही है। तो आइए फिर इसे एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

0: नाटक ना कर, नचना यार, नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, पहनी सगाई चे ना पाइनो नचना ही पहनता है।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो पहन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने आज एंटरटेनमेंट की दुनिया ब्रिस्बेन क्वींसलैंड हमने बहुत सारी न्यूज अपडेट्स आज जानी है। इसी के साथ दोस्तों आपको पता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है लगातार कोशिश करते रहना। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो रुकते नहीं है कभी भी। इसीलिए हमेशा हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। याद रखिए, छोटे छोटे जब हम कदम बढ़ाते हैं और छोटे छोटे कदम ही हमारे बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं हमें। इसीलिए जरूरी नहीं है कि कुछ पाना है तो सबसे पहले शॉर्टकट अपनाए। जी नहीं, अपने लाइफ में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट की खुशी थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन उसका नुकसान हमें बहुत लंबे टाइम तक झेलना पड़ता है। इसीलिए कभी भी लाइफ में कुछ भी चीज में आगे बढ़ने से पहले हमें छोटे छोटे कदम ही बढ़ाने हैं। जल्दी जल्दी पहुंचने से क्या होता है, नुकसान ही होता है। इसीलिए छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी बातें जानी है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया क्वींसलैंड ब्रिस्बेन कहां कहां से अपडेट्स आप सभी के लिए जानने लेकर आई थी। आशा करती हूं आपको जरूर जरूर अच्छी लगी होगी।

0: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
1: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: What the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर.
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो.
2: Okay.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका में डेंगू से 56 लोगों की मौत, जुलाई में 20,000 नए मामले। श्रीलंका पिछले करीब 10 सालों में डेंगू के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है। ये बीमारी इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि सरकार को इससे निपटने के लिए ड्रोन तैनात करने पड़े हैं। मिलिट्री ड्रोन की मदद से छतों और मच्छरों के पनपने वाली जगहों का पता लगाया जा रहा है और जगह जगह जमा पानी का पता लगाकर डेंगू फैलने से रोका जा रहा है। हिटलर के जन्मस्थान में खुला पुलिस स्टेशन। ऑस्ट्रिया ने जर्मन तानाशाह की भयानक विरासत को दी नई पहचान। ऑस्ट्रिया के ब्रैनो एम इन शहर में उस घर में एक पुलिस स्टेशन खोला गया है जहां जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। ये 17वीं सदी के पुराने सराय के बारे में सालों से चल रहे विवाद के बाद हुआ है। इसी घर में अप्रैल 1889 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, सभी शव बाहर निकाले गए। NHPC तीस्ता स्टेज 6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा। बचाव दलों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान को जारी रखा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में पोस्ट हटाएं। IIT मद्रास ने छात्रों से इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर किया आगाह। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां इन छात्रों का नारा लगाकर बैनर पर अपनी बात लिखकर या फिर छोटे वीडियो बनाकर समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने छात्रों से कहा है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियोस को हटा दें। IIT मद्रास के एक छात्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, यूनिवर्सिटी ने हमसे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में डाले गए इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने के लिए कहा है। तबियत बिगड़ने पर जंतर मंतर से हटे अभिजीत दीप के। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके की तबियत अचानक बिगड़ गई है। तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। इसकी जानकारी दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आइए जुड़ते हैं अब खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में उतरेंगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड सहित कुल 1,168 मेडल दाव पर होंगे। भारत के 125 खिलाड़ी 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
1: Good morning.
2: Namaste. Good morning. So good to have you back. Namaste, everyone. And a very, very warm welcome. Aapka swagat.
1: Thank you. Thank you. Ji haan, dosto, aap sabhi ka swagat Radio Bizwani par. Pyar bhara namaskar. Sabhi ko salam aur sat sri akaal. First of all, I'm sorry I couldn't make it, but actually, it wasn't my fault.
2: Yes, thank God.
1: It was the fault of Telstra. They apologized, but बात ऐसे दोस्तों, अगर आप मुझे अपने घर पर बुलाए और घर का पता ना बताए तो मैं आपका घर कैसे पहुंचूंगा। तो यही चीज हुआ था। इन्होंने कॉल्ड आईपी, वी हैव स्टैटिक आईपी। स्टैटिक मींस इट्स अ कांस्टेंट आईपी, नॉट अ डायनेमिक बट कीप्स चेंजिंग, इट्स स्टैटिक। और इसके लिए मुझे पैसा भरना पड़ता है। मैंने पैसा भरा हुआ है, लेकिन दे सेड वी आर वेरी सॉरी, वी हैव माइग्रेटेड टू अनदर प्लेटफॉर्म एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। बट मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो क्या करेंगे, क्या उसमें सरदर्दी ले। अब तो यही हुआ था दोस्तों, और घर का पता मिल गया मेरे स्टूडियो का। अब मैं स्टूडियो पहुंच गया हूँ बहुत दूर से, और आप तक के लिए चलो प्रोग्राम। और बट एमी, व्हाट्स योर नेम? एमी,
2: व्हाट्स माय नेम?
1: कहते हैं कि माफ करना दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ। मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 डिग्री रहा। मैं आपसे कह दूं कि बहुत से लोग मुझे मैसेज किए हैं कि एमी डिड अ वेरी गुड जॉब, शी समहाउ फिनिश द शो, दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट। तो जो कुछ भी होता अच्छा ही होता है दोस्तों। कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, शायद ये एक प्रूफ रहा होगा। लेकिन चलिए, जब हम अभी शुरू किए हैं, अभी सब न्यूज सुन लें तो फिजी का भी समाचार सुन लें। फिजी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ मिलकर एक US$24 मिलियन का नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद है गांव के लोगों की इनकम बढ़ाना, फार्मिंग को मजबूत बनाना और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ सब जाएगा दोस्तों? गाँव में कौन रहते हैं ज्यादा, आपको पता चल गया होगा। नवाई दुम्बा में कुछ मैं सुना हूँ, जो लैंड रिजर्व हुआ था, वट एवर इट हैपन आफ्टर 106 years और समथिंग, दिट वेंट बैक टू द ओनर्स। फिजी इस हफ्ते पैसिफिक फाइबर कॉन्फ्रेंस हाउस कर रही है, जहाँ पैसिफिक के कई देशों की एक्सपर्ट्स डिजिटल कनेक्टिविटी और फास्टर इंटरनेट पर चर्चा करेंगे। ये जो डिजिटल बात है भाई, सब जगह लगता है आजकल। हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा है कि फिजी में कई लोग HIV के साथ जी रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि वो टेस्टिंग जरूर करवाएं, बिकॉज फिजी में बहुत ज़्यादा नीडल शेयरिंग हो रहा है, थोड़ा क्या बोलते हैं ड्रग के मामला आगे बढ़ रहा है दोस्तों। इसीलिए ये लोग को पता ही नहीं कि इनका पास ये बीमारी है। और ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने नया ऑस्ट अलर्ट इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का नेशन वाइड टेस्ट किया। और ये तो मेरे लिए एक अलार्म की तरह था, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा नेप ले रहा था और फिर जागना पड़ा। इसका मकसद फ्यूचर इमरजेंसीज के दौरान लोगों तक वार्निंग जल्दी पहुंचाने का, जो पहुंचाना है, इसीलिए ये किया है दोस्तों। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, वेरी गुड, आई लाइक दैट। नया फिगर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली हर 4 नई गाड़ियों में से लगभग 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये दिखाता है कि ईवीज के पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी और मजबूत हो रही है. दोनों देश पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. तो चले बस फिलहाल इतना ही, और कुछ अगर हाँ तो फिर बाद में लेकर आएंगे. ऑलराइट एमी, एम आई स्टिल ऑन एयर?
2: ओह यस, लाउड एंड क्लियर.
1: माय वॉइस इज बिट क्रैकली बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड.
2: इट्स वेरी कोल्ड.
1: सो एनीवे, I'm moving from here today. I've been here for 2 days or 3 days, something like that.
2: Right.
1: I forget the count.
2: Yep. Okay.
1: So I'm moving from here to another town.
2: Okay.
1: It's been a wonderful journey, beautiful journey. Everything is gone well. But guess what?
2: What?
1: I have decided to redo my van.
2: Oh, no. Again?
1: My fourth time.
2: Oh.
1: This will be the final time. Yes. So it'll make it more convenient. It'll make it more easier. Everything is quite good even now. Mm. But और आगे चलकर अच्छा होगा, तो more और homely feel होगा इसमें. लेकिन जो कुछ भी, कितना दिन हो गया मेरा out? How long have I been?
2: Just short of 3 weeks, because you left on a Friday and today is Tuesday.
1: Oh, so it'll be all 4 weeks before I get back.
2: Three.
1: 1 month.
2: Three weeks.
1: This Friday will be 3 weeks?
2: Yes.
1: Oh, so I should stay out for another week?
2: If you want.
1: Yeah, well, I still do my work. Everything is... Dekho, zamana kahan se kahan aa gaya, dosto. Aajkal chahe jahan par bhi ro. Chahe sulu pehne hue ho, chahe kuch bhi pehne ho, apna pura kaam kar sakte. It reminds me of an ad.
2: Now,
1: I don't know whether it was in America or here. This guy is wearing a sulu. Mm. He just put a shirt on and a tie.
2: Oh, yeah.
1: And he was doing a cool conference. Kuch mein bhag liya tha jiya. It was just an air.
2: Yeah,
1: you know?
2: Yeah. Now, listen, let me tell you something. Life is not about work only, where you can just work from anywhere. It's about family. Okay?
1: Well, it's no not, family here. It's, let me tell you, my family here, I've got family here. I've got cows here. I've got bulls roaming around. What else I've got? I've got chudiya, and yes, mere families hain yahan par.
2: Lekin, those families that you're calling families right now, because that's where you are, once you move on, you are forgotten with those families that you're making up
1: you
2: now.
1: You don't know. They might have a better memory than human beings. Oh, by the way, no human interaction for 3 days. I was here all alone. It's such a vast, big place.
2: Mm-hmm.
1: But, one guy came and went away. But, it's down nowhere. I think they encourage kar rahe ki log is town mein aaye. But the facilities, I tell you, such a beautiful facility.
2: And,
1: hot water and everything.
2: And what's the name of the town you're in?
1: Tiba. This is Tiba.
2: Tiba.
1: I'm still in Tiba.
2: Tiba.
1: Yes, I'm living today.
2: Okay.
1: Yeah. So.
2: All right. Let me do the weather forecast. So, aaj ka mausam. Yeah. We're expecting a shower or two with a minimum of 12, a maximum of 22. Tomorrow, there's some cloud clearing with a minimum of 11, maximum of 24. No rain expected tomorrow. Thursday, mostly sunny with a minimum of 10, maximum of 23. Friday, possible shower. 23 is hot.
1: No, 10.
2: 10.
1: That's not cold compared to how I've been conditioned now in this cold.
2: Oh, you'll be
1: 2-3 degrees.
2: You'll be perspiring when you come back. Okay, Friday, there's a possible shower and there's a minimum of 11 and a maximum of 22.
1: Oh, it's going up.
2: Saturday is a shower of 2, minimum of 11, maximum of 21. Sunday, again, shower of 2, minimum of 11, maximum of 21. And Monday, again, a shower or two expected with a minimum of 12, maximum of 22. Let's see, rasta ka kya hal hai. Last I checked, there was a clearing. Okay, Mogul Road, Pinjara Hills, there's a multi-vehicle crash. All lanes are affected, and that's inbound towards the city.
1: That is a multi-vehicle crash, yeah.
2: Yeah, so that would be a really bad one. Because that's a very busy road.
1: Yep.
2: Um,
1: This Ipswich
2: motorway way call. There's a multi-vehicle crash. One lane is blocked.
1: Everywhere multi-vehicle.
2: Westbound towards Ipswich. Okay, then the Gympie arterial that in Bald Hills has cleared up. So that's okay. That's sounding good. That's okay, about it. Okay. So that was the traffic.
1: Okay, aur dekhe dosto. हर नई सुबह ये याद दिलाती है कि जिंदगी हमें एक और मौका देती है परफेक्ट बनाने का नहीं बल्कि कल से बेहतर इंसान बनने का ठीक है तो आई थॉट आई रीड दैट टू पीपल मेरा कंट्रीब्यूशन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर लाइव्स यू देयर
2: यस सॉरी आई एम लिसनिंग टू यू
1: या You seem to be lost.
2: I was reading something. I'm really sorry.
1: Okay. All right.
2: It says men...
1: Okay. Chalo, ye sunte hain.
2: Men live in a fantasy world. I know this because I am one and I actually receive my mail there.
1: Okay. You're trying to put a funny one in.
2: Sorry, I was busy reading that. I just saw that. Okay.
1: It's all right. Okay.
2: Okay. Well, I think it's time for a song. Let's have a break with my favorite, okay? Here we go.
1: The one I used to play all the time.

0: जी हाँ, एक ऐसे गगन के तले। देखिए, हमारा जो एटमोसफियर होता है, हम जहाँ पर होते हैं, हमारा माइंड उसी तरह से ये सेट कर देता है कि नहीं। अब इसमें देखो, ऐसा फ्री गाना, जहाँ पर पंछी हो, जहाँ पर ये सब हो, वाह, इसका मतलब कुछ और हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत सच ही बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत पीसफुल, क्वाइट एंड पीसफुल। कभी कभी ऐसे अपने मन को शांत करने के लिए इसे करना चाहिए दोस्तों। थोड़ा यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ना कुछ होते हुए खामोशी में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे।
1: ओके, here we go.
0: It's all this, you know, the jungle, it's a noise, you know, in the city with all this, you know, you need to get out. You need to retune yourself.
1: And appreciate the serenity that affords you.
0: Oh man, yes. It is so beautiful. Mm. I've never seen such blue skies. I know, jo log gaon se aaye hain, wahan par pollution kam hai, wahan par ye sab cheez bahut nahi hota hai. Or it is a different kind of sky, pure blue sky, clear as anything, you know. All you hear, okay, idhar se chidiya bol diya, ke udhar se bol diya, that's about all you hear. And of course, moo.
1: Moo.
0: I sounded like your granddaughter.
1: Yeah, I just thought of her instantly because you said, what sound does a cow make me moo?
0: Yeah.
1: Oh, yeah. Okay, speaking about her,
0: okay,
1: I won't be here tomorrow and Thursday because I have to just rush off. She's very unwell and they just need a bit of an extra hand.
0: Yeah,
1: so
0: okay.
1: I'm going to race off tonight.
0: She'll be okay.
1: Yeah, just maybe some TLC. She's keep calling for RG, so.
0: She's learned that word
1: she's
0: now, RG, na? And
1: word
0: always calling RG.
1: Even though her other grandmom is there, she's calling for RG. Yeah. I mean, like, I feel so bad about it, but.
0: Aja, beta, aja.
1: But I'm also feeling a little smug about it.
0: आगे और नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा,
1: ओके, हियर वी गो।
0: ओके,
1: यप।

0: married.
1: Okay, we are back. Back. Can you hear me? Am I a bit louder now?
0: Yes.
1: Amy?
0: So much better.
1: Okay, I must be a bit louder. Achha, suniye. Ek bahut important news hai, yala. A truck carrying jars of pickles crashed in Ohio, leaving an entire stretch of highway covered in pickles and pickle juice. Cleanup crews had one of the crunchiest jobs of the week. Yes, such mein hua hai. Aur ek baat aur hai, dosto. Around 50 sheep wandered into a supermarket in Germany, calmly browsing the aisle as if they had a grocery list. Staff and customers were left wondering who was paying the bill. So they went grocery shopping.
0: I can just picture how they're probably looking at all these things. Must be thinking, what is
1: nothing, you want to hear another one?
0: Nothing green. What are we supposed to eat here?
1: Yeah. They can't find anything to eat. I don't know whether they went to the produce, veg section.
0: Mm.
1: Imagine if they went there and they started eating. Oh, my God.
0: Oh, my goodness. That would
1: and
0: be funny.
1: And doing the other business, too.
0: That would be so funny, eh?
1: Eh? And doing the other business. They could have picked it up and sold that, too, as manure.
0: Oh, come on. That's
1: right.
0: Not breakfast talk.
1: Bear's unusual pit stop. A bear wandered onto a military base, stole a peach, enjoyed its snack, and then left behind a very unwelcome thank you gift before strolling away. There. We were talking about that.
0: I think it's time to go to the marketplace.
1: Yep.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? Ye grocery pass wale shop se le sakte hai na?
4: Yes, baby, but no compromise with quality and health. Hum jayenge sirf MC's Indian and Island Food.
3: Aisa kya khas hai wahan?
4: Sab kuch. Quality spices, lentils, rice, flour aur frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane ke best Indian butchers supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. Aur fresh local produce bhi rakhte hain. Saath hi kitchenware and disposable plates ki large range kisi bhi function ke liye.
3: Are wah! Intelligent ho gayi ho.
4: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
5: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
6: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
6: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
7: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
8: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. Commercial matter हो जैसे lease का मामला, business हो या फिर घरों की buying selling का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
7: अरे वाह, इनका पता बताना.
8: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: Alrighty. एंड वी बैक।
1: देखिए आज मैं बहुत अच्छे अच्छे सेंसिबल और मजेदार बातें लेकर आया हूँ। होपफुली आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल। जैसे कि एक और मैं बताता चलूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नोइजी लॉन मोवर्स, दोस्तों आप जानते हैं लॉन मोवर कितना नोइजी होते हैं। मेनी टाउन्स आर हायरिंग हेड्स ऑफ गोट्स टू ईट वीड्स इन ओवरग्रोन ग्रास। सी आम के आम गुटली के दाम। दे आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड दे नेवर आस्क फॉर अ कॉफी ब्रेक। और सब काम। ओह बाय द वे टॉकिंग अबाउट दैट, आई डोंट नो हुज मेंटेनिंग द ग्राउंड्स हियर, मैन इट इज इमेकुलेट आई टेल यू। सो वेल हियर द सो वेल द ग्राउंड्स वेयर आई एम,
0: या
1: आई हैवंट सीन अ सोल बट आई डोंट नो हुज मेंटेनिंग।
0: ओह
1: इमेकुलेट, या इट्स अ बिग एरिया। आई थिंक दे यूज्ड टू हैव रोडियो हियर and also they used to probably have auction too, I don't know. Very very nicely built. So, but nobody here. Okay, chalo. You gonna play a song?
0: Yeah, I will play
1: a song.

0: राम सीताराम कैसे हैं आप? अभी आप एयर पे आ गए।
1: We have a caller. Oh, sorry, I will stop the song because we are.
0: Okay. हाँ पंडित जी, हाँ हेलो पंडित जी,
2: नमस्कार
0: नमस्कार। सॉरी मैं, आप जानते हैं मैं बहुत दूर हूँ और ये थोड़ा टेक्निकली थोड़ा और नया, बट एनीवे आप आ गए हो
2: जी। तो सर वही हम कहना चाहते थे कि कल का गुरु पूर्णिमा का तिथि है, लोग अपने अगर गुरु को नहीं पता है कोई गुरु, वैसे गुरु तो बहुत है हमारे
0: जी हाँ।
2: लेकिन सर्वप्रथम अपने माता पिता को ध्यान करें और अपने गुरुजन को भी ध्यान करें, और हो सके तो कुछ जो भी कुछ आपको आता है अपने गुरु के प्रति माता पिता के प्रति कुछ भगवान से प्रार्थना कर लें कि सबका स्वास्थ्य में रहे, जो भी जीवित है और नहीं है तो उनके आत्मा के लिए प्रार्थना आशीर्वाद मिले, यही हमारी आज गुरु पूर्णिमा कल के गुरु पूर्णिमा के लिए संदेश है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ मैं भी अपने गुरु को याद करूंगा, और वैसे तो गुरु जी को हमेशा याद कर ही लेते हैं, लेकिन एक स्पेशल डे है, और हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं और संदेश लेकर आए हैं, और सब ठीक है पंडित जी?
2: यात्रा
0: बहुत अच्छा से कट रहा है दोस्तों, आपका आशीर्वाद है ना, तो सब कुछ ठीक है।
2: अच्छा जी ठीक है, मिलते हैं फिर।
0: अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हम अभी बातें कर रहे थे पंडित सुरेश के साथ, और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। ओके और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं अमिता कहाँ पर है।
1: Yeah, I'm right here. I will always be here.
0: Can you hear me?
1: Okay, I'm here okay. for now. Sorry,
3: I'm here
1: I won't
3: for
1: be
3: now.
1: Here tomorrow.
3: Sri, I won't be here tomorrow.
0: I know that. Okay, चले एक गीत मैं बजा दूं आप सभी के लिए, कि नहीं बहुत से गीत लेकर आया हूं मैं, और अगर आप भी कुछ सुनना चाहे दोस्तों तो यू कैन लेट अस नो। ओके चलिए।

0: जी हाँ दोस्तों, आप पल पल दिल के पास रहते हैं, जी हाँ, लेकिन थोड़े देर में हम आपका साथ छोड़ेंगे, आधे घंटे में, और कल मैं आऊँगा, होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। कल अमिता जी नहीं रहेंगे, एंड सो आप तो रहेंगे साथ में दोस्तों, मेरा साथ ज़रूर देना। कुछ अजीब सा लगने लगता है जब आप किसी के साथ प्रोग्राम करते हो, अगर एक व्यक्ति ना हो, वो ना हो, तो फिर थोड़ा सा माइंड को रिट्रेनिंग फेज में ले जाना पड़ता है।
1: Just remember,
0: खैर,
1: tomorrow is Wednesday, so you got to keep it happy, okay?
0: No, don't worry. It will be on my mood what I'll do tomorrow.
1: No,
0: I
1: no,
0: just
1: you
0: don't
1: make sure
0: know.
1: you
0: I
1: have a
0: day.
1: happy mood.
0: I will try, but I am a, what you call it? माइंड के ऊपर रहेगा मेरा, मैं क्या सुनना चाहूंगा। वेल इट डिपेंड्स व्हाट माय लिसनर्स मेक, हाउ दे व्हाट दे डू, यू नो हाउ दे, अगर आकर हैप्पी मूड में करेंगे मुझे तो मैं हैप्पी गाना बजाऊंगा, अगर कोई कॉल वोल नहीं करेगा तो मैं सैड गाना बजाऊंगा।
1: वेल आई एम श्योर आई विल हियर फ्रॉम लिसनर्स इफ यू आर नॉट कीपिंग इट हैप्पी।
0: ओह नो नो नो नो, लिसनर्स विल नेवर टेल यू। No, I'm sure they will. I know.
1: Yeah.
0: I know a few that tell you.
1: Yes,
0: I know.
1: Yes.
0: Yeah.
1: I have a few working in the background that tell me what's going on.
0: Yep. अच्छा तो हम आगे बढ़ते हैं।
2: हाँ। या चुप रहूँ
3: ना?
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
2: तो चले दोस्तों, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत है और आई एम 100% श्योर ये गीत भी आपको अच्छा लगेगा। और सुनते हैं इस गीत को एक बार फिर किशोर कुमार।

0: जी हाँ दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। और इसी के साथ मैं यहां से निकल रहा हूं और अमिता भी। और अमिता, यू'ल बी बैक नेक्स्ट मंडे।
1: Yes, yes, I am. I'm really
0: ओके,
1: sorry about
0: आई'ल टेक केयर टुमारो। एंड
1: next 2 days.
0: मेबी शशि, शी इज लिसनिंग, मेबी एबल टू डू फ्यू डेज ऑफ प्रोग्राम। सो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आप सबने साथ दिए हैं और बहुत से लोग मेरे साइड लिए हैं इस बार। और
1: That's okay. Everyone was supporting me yesterday. They were encouraging me yesterday.
0: I am
1: I
0: just
1: really,
0: kidding.
1: Really appreciate
0: I am
1: it.
0: Just kidding. They love you. Don't you worry.
1: They appreciate. I appreciate all the
0: yes,
1: encouragement
0: yes.
1: I got yesterday.
0: अरे थोड़ा झूठ बोलने में क्या जाता है यार, कुछ नहीं।
1: All right. In saying that, I'm going to say namaste and goodbye, and I'll see
0: so
1: you
0: will
1: all
0: I.
1: next week.
0: Yeah.
1: Take
0: and
1: care.
0: you have a safe
1: yes,
0: trip, okay?
1: No, thank you. Yep.
0: And I hope the baby feels better soon.
1: Yeah, me too. Okay.
0: Okay.
1: Namaste.
0: Yeah. All right. Bye. Namaste.

नमस्कार, आदाब, वेलकम। एक बार फिर से एक नई सुबह हो चुकी है और इस नई सुबह के नए से आगाज के साथ आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी सताक्षी। जहाँ नया सा दिन है, नई खूबसूरती है, नए गोल्स हैं, नए सपने हैं और इन सपनों को बेटर तो हमें बनाना है। वैसे इस सुबह कैसे हैं आप सब? देखिए, अगर अभी तक आप ब्लैंकेट के अंदर हैं और क्लॉक देख रहे हैं एक आंख खोल के कि बाहर निकले कि ना निकले, तो भाई उसे बंद कीजिए, अलार्म को बंद कीजिए, साइड में रखिए और उठ जाइए, ठंडी हवा का झोंका फील कीजिए, विंडो पर जाइए, अपनी विंडो को ओपन कीजिए और एहसास में डूबिए कि यार ये सुबह कितनी खूबसूरत है और इस सुबह के साथ आपका दिन कितना बेहतरीन होने वाला है। फिलहाल बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाते जाना है, लेकिन उसकी शुरुआत इस अगले ट्रैक के साथ होनी चाहिए, है ना? तो एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए छापन सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर। बहुत जबरदस्त किस्से आपके साथ बांटे जाएंगे इस ट्रैक के उस पार। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले कि आपके साथ आज की बातें करूं, सबसे पहले उन्हें विश कर दूं जिनका आज बर्थडे है। सो बर्थडे बेबीज, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और बस दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कदम से कदम मिलाते रहिए और चलते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी जीतना है, हासिल करना है। जिनके लिए आज दिन इसलिए खास है क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी। सो यार एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, आपके रिश्ते को डिसबैलेंस करेंगे और आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के साथ अगर विश्वास का रिश्ता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और जिनके लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

Yeah, it happens सुन रहे आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर. और इस बार इट हैपेंस का साथ जो इस वक्त आपके साथ है बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये सुबह आपके लिए बहुत स्पेशल है. अच्छा चलिए बात करते हैं अपने गोल्स की. यू नो हम सबके पास ना एक विश लिस्ट होती है और एक होता है गोल. मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ये होती है आपकी विश लिस्ट. लेकिन पता आपको विश लिस्ट और गोल में फर्क क्या होता है? देखिये विश लिस्ट सिर्फ आपके दिमाग में होती है. आप उसे कभी भी ना एक पॉसिबल वे के जरिए आप उसे अपनी ड्रीम से सच्चाई नहीं बना पाते. और गोल जो है वो कैलेंडर में होता है. सो अगर आप अपने सपने के आगे कोई डेट नहीं लिखते हैं ना, तो वो सपना सपना ही रह जाता है, आपकी विश लिस्ट ही रह जाता है. तो इसलिए अपने सपने को अगर आप सच्चाई में सामने लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे सबसे छोटा ही क्यों ना हो वो स्टेप, बट उठाइए जरूर, ताकि आप अपने गोल की ओर बढ़ सकें. एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर.

लोग क्या कहेंगे, आय हाय, बड़ा ही फेमस डायलॉग है। अगर फेल हो गए तो हमारा दिमाग यू नो हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन आज सताक्षी आपसे एक सवाल पूछती है, अगर आप कामयाब हो गए तो, इस अगर को कभी दूसरे एंगल से देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी आदत है ना नेगेटिव साइड को ही देखने की। यू नो लोग हमेशा आपके रिजल्ट पर ताली बजाते हैं, आपकी मेहनत पर नहीं। तो लोगों की बातें सुनना बंद करिए और अपने काम की आवाज को थोड़ा और तेज करिए। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM।

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं। हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये सफर है जिसे आप हर रोज सुनते हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। आइए इस सेगमेंट में अभी ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

कानों की हैट्रिक में हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये लास्ट ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो कानों की हैट्रिक के बाद आपसे होने वाली हैं, सो तैयार रहिए उसके लिए और इस अगले ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

रिजु प्रस्वानी पर सदाक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। भाई रेंटल बॉयफ्रेंड, इस टर्म को सुना है आपने? हाँ, देखिए ये टर्म जो है इसकी शुरुआत हुई थी जापान से और अब ये इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है। रेंटल बॉयफ्रेंड क्या मतलब है इसका? भाई जैसा कि वर्ड बता रहा है, रेंटल बॉयफ्रेंड मतलब किराए पर बॉयफ्रेंड का मिलना। अच्छा, ऐसा होता था ना कि पूरे ग्रुप में सबके पास अपने बॉयफ्रेंड्स हैं लेकिन एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है और वो डायलॉग मारता था ना कि बॉयफ्रेंड क्या किराए पे मिलता है जो उठा लूं। तो हाँ भाई, अब बॉयफ्रेंड किराए पे मिलता है और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये रेंटल बॉयफ्रेंड आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्दी ट्रेंड चल पड़ा है और इस ट्रेंड के चलते लोग मूवीज जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, रेंटल बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हैं और स्टेटस सिंबल की तरह है ये। लेकिन ये ट्रेंड जब मैं पढ़ रही थी, जापान तो एक खैर अदर लेवल कंट्री है, लेकिन इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यार कहाँ आ गया है सब, किस ओर आज का यूथ जा रहा है, लोग जा रहे हैं। मतलब हम बेसिकली देखा जाए तो ये स्टेटस सिंबल है ना कि भाई सबके पास है, हमारे पास नहीं है तो हमें भी दिखाना है कि हमारे पास तो है, बट क्या ही यूज है इसका? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। आई डोंट नो कि क्यों ये स्टेटस सिंबल इतना हाई होता जा रहा है हमारा कि हमें रेंटल बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। आपका इस बारे में क्या थॉट है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ हैं आप।

यार, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में भी देखा, और अब हम देख रहे हैं भारत में। हजारों बच्चे सड़कों पर हैं और किस तरह से उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, इस मोमेंट को, प्रोटेस्ट मोमेंट को दबाया जा रहा है, वो देखा जाए तो दोनों साइड मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना साइड भी है क्योंकि इसके पहले भी पेपर्स लीक होते रहे, लेकिन बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन मैनेजमेंट में सुधार भी हुआ है इस दौरान, भारत की बात करूं तो। उसके बाद एकदम से इस तरह का आंदोलन आना, डेफिनेटली स्टूडेंट्स की आड़ में बाकी की पार्टीज अपना मुनाफा तो कमा रही हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो जनता का सेवक होने का मतलब ये था इस वक्त, इस इतना आंदोलन बढ़ता ही नहीं आई गैस, अगर नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स के बीच पहुंच जाते। इस मोमेंट में कई नेता शामिल हो चुके हैं, कई अभिनेता अभिनेत्रियां शामिल हो चुके हैं, मतलब बॉलीवुड भी इस मोमेंट में खड़ा है, कई बड़े लोग शामिल हो चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग अगर इस मोमेंट का हिस्सा ना बनते जाकर बात करते स्टूडेंट्स से, तो आई मीन पार्टीज को, जो अदर पार्टीज हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता और शायद ये हालत नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा काम किया है, उन्होंने बच्चों को पर डंडे चलवाए, उन्होंने बच्चों को मरवाया और उन्हें सप्रेस करने की, उन्हें दबाने की कोशिश की, जो आई थिंक क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आई गेस ये गलत है। आपकी राय क्या है हमारे साथ बांटिएगा। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए ठापंस में।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।